रात जय न ध्यान करके है कि ती रात खासम विसार हैं ते कम जात नानक नावे बाज सुनात राग गूजरी महला चौथा हर के जान सदगुर सदपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सदगुर सरनाई कर दया न हम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जा

काहि रे मन चित्व उदम जा आहर हर जी ओ परया सैल पत्थर में जंत हो पाई दांका रिजिका गह कर थरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया राउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाई ठाकुर काही मन पौ करया उडे उड़िया वैसै कुसा आंतस पाचै बजरे शरिया तिन कवन खला वै कवन चुगा वै मन मह सिमरन करया।

ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सदरन को बल मोहबद कियो। कट कट गए अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते गूंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानाई, कट कट गए बट बट की जानाई। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद हर आलम।

प्राण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो सरी असपान कृपा तुमरी कारु मैं न कहे सब तोहे बखान्यो बहुरा।

0: बोले फिर दिशमेश जी खंडाली छिकाके, 10 लाख वैरी पालिया है केराया के,
1: वो 10 लाख वैरी पालिया है केराया के,
0: 10 लाख वैरी

0: संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी
1: सतगुरु रहे
0: बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद तूरे फलो।

नमः युगाद गुरै नमः सात गुरै नमः श्री गुरुदेव नमः दर्शन देव जीवा गुरु तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा एहे बेनंती सुन प्रभ मेरे देहे नाम कर अपने चेरे अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किने विरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसै मेरे चीता नानक करे अरदास विसरना ही पूरन गुणतास नानक एक करे अरदास विसरना ही पूरन गुणतास वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

भगवान रे राम नाम जासले बिन गोर एह रास क्यों लहो गोर मेल हर दे रहाओ संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ होए

ज्यों जोगी जात बाहरा ताप नाही सात संतोख त्यों नाम में बिन देहोरी जाम मारे अंतर दोख साकत प्रेम ना पाई है हार पाई है सतगुरु पाए सुख दुख दाता गुरु मिले कहो नानक सिफत सुनाए साकत प्रेम ना पाई हर पाई है सतगुरु पाए

मन रे राम नाम जस ले। खट्टी खट रहे हैं ना, पैसे मिलते ने खुश होंगे, पुत्र मिलते खुश होंगे, जमीन मिलती है खुश होंगे, घर मिलते खुश होंगे, कारोबार वधदे बड़े प्रसन्न होंगे। कभी सोचा है भी वाहिगुरु वाहिगुरु मिले, सुख होवे, मानसिक सुख होवे, शांति होवे, कभी सोचा जे? इसलिए ऐ मन तू वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, वाहिगुरु दा जस ले, वाहिगुरु नाम इकट्ठा कर ले। मन रे राम नाम जस ले। राम नाम दा अर्थ ये है ओ वाहिगुरु जी जो सर्वव्यापक हैं, जो कण कण विच रमे हुए हैं, जो साडे स्वास्थां नूं चला रहे हैं। इसलिए स्वास्थां द्वारा असी वाहिगुरु जपने, बोल के भी जपने, फिर इस तो अगला जाप है मध्यमा, चुप करके भी जपने। इसलिए बोल के भी जपो, 10-15 मिनट पहला बोल के जपो, फिर इसे नाम नूं सुनो, स्वास्थां विच रलाओ, और जिस दी स्वास्थां विच वाहिगुरु नाम रल जांदे ओदी मृत्यु नहीं होंदी, काल नहीं आउंदा, जम नहीं आउंदा ओदे पास। मन मंदर तन रीस कलंदर, काठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, बहुत जन्म नावा। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एह रस क्यों लाहो, गुर मेले हर दे। बिना सतगुरु की मेहर तो, सतगुरु की मेहर दो तरीकों नाल होंदी है। एक ते सतगुरु अपना बना के वाहिगुरु मंत्र बख्श देंदे ने, शब्द देंदे ने, आखदे ने बेटा तू वाहिगुरु जपना। इनू दया कहीदा है, ये मेहर नू दया कहीदा है। दूसरी मेहर मच मोर इंपॉर्टेंट है, वो उन्हां ते हुंदी है दोज हू मेडिटेट, जिहड़े सिमरन करदे ने ना, उन्हां ते वो मेहर वरतदी है, वो वाहिगुरु जी की कृपा हुंदी है, उन्हां गुरमुखां ते हुंदी है जिहड़े वाहिगुरु नाम जपदे ने। तां ते असीं गुरु दा आखा मन के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु प्यार नाल जपिए, सुते ही जपिए, अठो पैर जपिए, बहिंदियां उठदियां जपिए। मन होर ने होर की करना है, मन ते आया ही इस वास्ते है कि वाहिगुरु नाम जपे। तन ते पला को होर कम करेगा, तन ते पला मजबूर भी होवेगा, तन ते आउंदा जांदा भी रहिंदा, तन ते गल्लां भी करेगा, करत भी करेगा, रिश्तेदारियां भी निभाएगा, इधर उधर आवे जावेगा, पर मन नू ना आउण जाण दिओ, मन नू वाहिगुरु नाल लाई रखो। वाहिगुरु गुरु है, वाहिगुरु पिता है, वाहिगुरु गोबिंद है, वाहिगुरु प्राण नू चलाउण वाला है। इस वास्ते वाहिगुरु दा संग करो, वाहिगुरु दे नाल जुड़ो। जिहड़े जुड़ना चाहणगे उहनां ते नज़र होएगी। कैसी नज़र होएगी? सतगुरु आप आके सानू वेखणगे कि बच्चा कैसा है। कदी कदी बाप अपने बच्चे नू कोल बिठा के पुछदे, तू की पढ़िया है बेटा? तेरी जेब खर्च ठीक है? तेरा शरीर ठीक है? तेनू कुछ चाहिदा तो नहीं? बाप ने ही उन्नू वड्डिया कीता है, बाप ने ही उन्नू स्कूल विच दाखिल कीता है, बाप जानदा है कि मेरा बच्चा पढ़िया है, पढ़ भी रहा है। पर कदी कदी बाप प्यार विच आके बच्चे नू गोद विच लैंदा है ते पुछदा है, दस तेनू की चाहिदा है? एहो जे बच्चे बनो कि व्याप जड़ा साडा पिता गुरु नानक है ना, उस सानू प्यार दे नाल पुछे, बेटा दस ते सही तेनू चाहिदा की है? सिख ते ओही है सात संगत जिन्हों गुरु गोद विच बिठा लवे। वास्तव विच प्यारा ओही है, गुरु प्यारियां तो बिना कदी रहा ही नहीं। ते प्यारियां तो बिना ना गुरु हुंदा है, ते ना गुरु प्यारियां तो बिना हुंदा है। इसलिए गुरु दे प्यारे बनो। किद्दां बनीदा? पहला दास बनो, निमाणे बनो, गरीब बन के आओ, मन के चलो कि वाहिगुरु जी, गुरुदेव, गुरु नानक जी, ये मन तन थोड़ा ही है, परिवार भी थोड़ा है, साडे विच अकल भी थोड़ी है, मेहर करो। फिर सानू सतगुरु अपना बना के नाम दी दात बख्शते ने, समय समय नाल सानू
ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਵਰਸਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਧੀ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਆਪੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ? 26 ਸਾਲ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਸਤਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ

0: वाहे गुरु। वाहे गुरु साहेब जीओ, धन धन गुरु नानक साहेब, पूज्य सतगुरु जी, असीं आप दे बच्चे आप दी गोद विच बैठे हाँ, आप दा वचन सुने हैं, आगे अनुसार वाहे गुरु नाम जपे है, पातशाह लेख के विच लाउणा, आप दी हाजरी भरदे हाँ, किसे तरह की कोई अवग्या होगी तो खिमा कर देना। आप दे अबोध बालक हाँ, छोटे छोटे बच्चे हाँ, नीवे हाँ, गरीब हाँ, आप दे लड़ लगे हाँ, लड़ लग्या की लाज निभानी पातशाह, लड़ लग्या नू आसरा दे रखना, सब का भला करना, सब दिया किरतां विच बरकतां पाउणियां, जो जी आप दे पावन दर ते आवे सो सदा ही राजी जावे, कला आप जी के पवित्र नाम की वरते, सुख होवे नाम चेतावे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत कला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम

नहीं आ सके अब तो अब किसी मन बहुत नेड़े लेने समझाना है। दरअसल धर्म की सारी शिक्षा दीक्षा मन में समझा ली है। गुरु के नेड़े आज स्वास्थ्य भी लेना है तो अब साड़ी गुरु मर्यादा संकट देख है। भगत नामदेव जी महाराज का एक वाक है कि साहेब संकट सेवक बजे किरण काल में झूले दो फुल लगे। साहिब मालिक गुरु अगर संकट देख है तो जोड़ा सेवक है वह आप भजिए नचिए गुरु साडा संकट है अभी साथ रहे तो करना है तो क्षमा करनी। जब जब गुरु संकट आया है बथेरिया ने बदावे लिखे हैं बथेरिया ने साथ छड़े है और गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने तो साफ कहना पाया कि संग सखा सब सज गए हो न मुदे हो साथ कहो नानक ए विपत में टेक एक रजना सारे छड़ गए क्योंकि हम सुख दे साथी तो सारे बन गए दुख का साथी कौन बने सब सुख दे यार बनते ने सुख दे मित्र बनते ने। महाराज सिंह ने सुख में बहु संगी भय दुख में संग दंत बंदा कह के देंदा फलाना मेरा साथी फलाना मेरा साथी फलाना मेरा साथी पर साहब कहने कोई तेरा साथी नहीं सब सुख दे साथी ने। और जब तेरे को दुख होगा तो चिराग लेके भी साथी लभेगा नहीं लभना। तो महाराज कहते ने कि संग सखा सब तज गए तो नामदेव कहते ने कि साहेब संकट दे मालिक संकट देख है धर्म संकट देख है गुरु संकट देख है तो सेवक भजे तो जोड़ा सेवादार है सिख है सेवक है वो आप छो गुरु ने गुरु आप ही जित सकते हैं क्योंकि अनेकों ने मैंने कहा भी कोई कला ही नहीं वरती गुरु ने कोई कला नहीं वरताई तो कौन देखे कला तो वरतान ने कला बास मदार गुरु नहीं वरतान होंगे कि नाल तक के सकती है सुखा जा रब लो जन को आव कटा जा गुरु कला बाज नहीं है मदारी नहीं है गुरु तमाशा करने वाला नहीं है गुरु सच नाल जोड़न वाला है। और सच जितना गहर गंभीर होगा सच के मार्ग से जेड़ा जितना ज्यादा चलेगा औखना ही औखना है। इस वास्ते सच के मार्ग से चलना बड़ा औखा है। काफ ले या बह गए या मिट गए रात से शमशान अगर आते हैं इस बाल में कहना पाया कि सच के रस्ते कुछ मैंने शमशान दिखाई देंगे कारण बिखड़ा रस्ता पहाड़ी रस्ता है ऊंचाइया ने आम हमवार जो है ये रस्ता नहीं है। तो दुख के समय तो कुछ सिखा ने भी बिदावा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लिख दिता कह दिता से महाराज हूं तुम साडे गुरु नहीं असी थोड़े सिख नहीं क्यों तुम आप संकट देखो तुम थोड़े सिख बनने के असी भी संकट एक पही असी भी दिता देख पही है तो बिदावा लिख दिता। तो नामदेव का फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी है कि साहेब संकट वे सेवक भज है। अगर गुरु संकट दे है साहेब संकट दे है तो सेवक आते उन्हें चढ़िया गुरु तो अंजाम की आंदा है। यह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी बैठे परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फैसला किरम काल में जीरे दो कुल लगे ज्यादा चिर जी नहीं सकेगा आइए घट गए। अगर उन्हें वह द्रोह की पा अगर उसने धोखा दिता अगर उसने दिता के समय साहेब का साथ छड़िया और इस वास्ते छड़िया दुम कौम धर्म ये पंथ पंथ आकर गुरु है तो पंथ उसके संकट है तो क्षमा करने बथेरिया ने बदावे लिखे हुए तो इन्हों बदावे लिखने वाले नामदेव जी महाराज का कहना है किरण काल में जीवे ज्यादा दिन नहीं जी सकेंगे तो दो फुल लगे दो फुला इन्ह दजाए मान हो लानता पैदा लोग फटकारा पाते ही रहने तो दो गल्ला

गुर आराधना जीवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर देखना श्रवणी सुनना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वस दे जग में उत्तम कादिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो नाम इशारियन साप जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माय बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे देदातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हाँ तुद बलिहारी है लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर मह पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाए वाज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज पौड़ी तुद त्याइन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्याइन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पणा पीर पिताबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए पूरो करे विनाश करमे तगी है जित जित लाए आप तित तित लगी है श्लोक महला पंजवा चंगियाई आलत करे बुरियाई होए सेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर महला पंजवा कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित नानक तैसे टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा बोलिया नवनिध पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिनके संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिनकी कार शरीर पवित्र होए पखा पानी पीस बिकसा पैर तोए आपो कछु न होए प्रभ नदर निहाली है मोहि निर्गुण दिचे थाओ संत कर्मशाली है श्लोक महला पंजवा साजन तेरे चरण की होए रहा सदतूर नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर महला पंजवा पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग अष्ट तीरथ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक पाग पौड़ी नित जपिए सास गिरास नाव परवदगार दा जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनेक रूप खिन माहे कुदरत तारदा जिसनो लाए सच तिसे उदारदा जिस दे होवे वल सो कदे न हारदा सदा अपग दीवान है हौ तिस नमस्कारदा रूप महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना सब फल पाए आहे नानक नाम आराध्या गुरु पूरे दिया मिलाए पौड़ी सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेशिया तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशिया तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए जन के संग निहाल पापा मैल तोए अमृत साचा नाओ उठे जापिए
मन को हो संतोख पुखा त्रापी है। जिस कट वस्या ना हो तिस बंधन काटी है। गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटी है। श्लोक महला पंजवा। मन में चितवा चितवनी उदम करो उठनीत। हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत। महला पंजवा। दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रखा मूल। नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी। जी की दिशा होए सो गुर पै अरदास कर। छोड़ स्याण सगल मन तन अर्प तर। पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर। साध जना कै संग पव जल बिखम तर। सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर। खिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर। मन को होए संतोख त्याय सदा हर। तो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा। लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया। नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा। बन तिहाव लै हिक साथी लगम दुख हरता हर नामा। बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी। पाईन सब निधान तेरे रंग रत्या। ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या। पहुँच न सकते कोय तेरी टेक जन। गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन। गुर पै सिख पंडार कर्मी पाईए। सतगुर नद निहाल बहुड़ ना पाईए। रखे आप दयाल कर दासा अपने। हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवा।

टेंडे सिमरन हब किच लगदम दिखमना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दया त्याय वन्ये रोगा कान हर गुण गाय अंदर वरते ठांड प्रभ चित आय पूरन होवे आस नाय मन वसाय कोई न लगे बिघन आप गवाय ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाय इन पाए सभी थोक जिस आप दिवाय तू सबना का खसम।

जाए खड़ोना, नाम तेरे के रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना, जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुकम तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड़ न पाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आद जुगादि आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया, पूना कही ना होए कटे कट सारिया, मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब कुछ आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुरु दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अन दिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी नै पवे, सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनु मन वसाए जिन उपाया, जिन जन से आया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जमे नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभु दास का दुख ना खव सके, हर जो नी जिते मत्थे वाल पछाड़न जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

कोई महला पंजवा कोट बिगन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अंधिन बिलपते जो सुनय कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहा कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना ता मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया रागुजरी भगतां की बाणी इको अंकार सतगुर प्रसाद।

अब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर दिन बैल बिराने हुई है फाटे नासट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत ते लख के कप ज्यो गत बिन रहन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूड तुने पछताई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लेओ मेलाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई हमरा इनका दाता एक रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो राज देने ता कमन बढ़ाई जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई जिस तू देवे तिसे बुझाई। जिस तू देवे तिसे बुझाई सतगुर मिले

और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेड़े है प्रियंगा, बिक अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नहीं दे दें बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पो पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कौन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बार पे खुदासी। हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना, काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा। रहाओ कर कर खाया पिंड बंदाया, चिंता मुंडा माया। ओम मसान की पसम लगाई, गुर बिन तप न पाया। काय जपोरे काय तपोरे, काय बिलो वो पानी। लख चौरासी जिन उपाय, सो सिमरो निर्वाणी। काय कमंडल कापड़िया रे, अस्थ काय फिराही। बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सर्प जोन वल वल अवतरे, अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे। रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। बेसवा जोन वल वल अवतरे, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सूकर जोन वल वल अवतरे, अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। प्रेत जोन वल वल अवतरे, अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसे। गुजरी श्री जय देव जियो का पदा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिम, सत आद पावरतं। परमद पुतं परकृत परं, जग चिंत सर्वगतं। केवल राम नाम मनोरमं, बद अमृत तत्मयं। नादनोत जस समरणेन, जन्म जराद मरण पयं। रहाओ इच्छस जमाद पराभयं, जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं। अवपूत पाव समभ्यं, परमं प्रसन्मिदं। लोभाद दृष्ट परगृहं, जद विद आचरणं। तज सकल दोकृत दुर्मति, पज चक्र तर शरणं। हर भगत निज ने केवला, हृद कर्मणा

कुंज बाहर है, कुंज अपने तन से पहनी हुई है, जहर उसने अंदर अपनाई हुई है, जहर अंदर है, विख अंदर है, कुंज बाहर है। हम जदों त्यागन का मसला आया उदू सप अंदरली बिख नहीं त्यागता, बिख नहीं छड़ता। हर 15 दिन बाद कुंज त्याग देता, जदों कुंज त्यागता है ना उदों जहर बढ़ जाता। जेडे लोग सप्पा की जहर इकट्ठी करते हैं, कई ऐसे फार्म बन गए, एक फार्म जिथे सप राखवे ने ते केवल जहर प्राप्त करने लिए राखवे ने। उन्होंने इस गल से पता लगता है फलाना सप पूरी जहर अपना चुका है, जहर का भरिया होया है, ये हुण इनके कोलों पूरी जहर प्राप्त दिख प्राप्त की जा सकती। इस गल का एहसास ही इस तो हुंदा है जदों वो कुंज लाउंदा है। सप दे उपर कुंज है, अंदर जहर है। ते सतगुरु ने बाणी विच बाबा नामदेव जी की रचना ते बैठ के एक ख्याल दिता, कहन लगी

बल्कि दूसरे पास कहने लगे एक हर निर्मल मैला मलता एक संसार एक हर निर्मल जानता अंत न पार। हुण प्रभु से निर्मल ते मन से मैला उन्हें आके किमें वसे हुण मनुख ने चाहया प्रभु वसे पर तो हुण तन्नू लगते हैं तीर्थ गया तन तो गया सवेरे उठिया अमृत वेले इशनान कर लिया बड़ा प्रसन्न मैं तो सवेरे उठ के इशनान किया पिता से तड़ गई है पिता से तड़ गई है गुरु ने क्यों आख्या कर इशनान सिमर प्रभ अपना ये दो इशनान वक् वक् इसलिए अगे मन से तन दो चीजें कठिन कहने लगे कर इशनान सिमर प्रभ अपना फिर की होएगा मन तन पय अरुगा सिमर प्रभ अपना नाल मन अरोग होएगा कर इशनान नाल तन अरोग होगा इतना इस इशनान का संबंध तब तन नाल है तन नु ही अरोग करेगा तन का इशनान केवल तन नु अरोग कर सकता है। गुरु ने इसके लिए बाणी अंदर एक ख्याल दे दिता कहने लगी गुरुदेव तीरथ गुरुदेव तीरथ है मत समझियो किसी इस्तां ते पत्थरां दा बनिया होया किसी दरिया के कंधे इशनान करन दा नाम तीरथ है। गुरु कहन लगे गुरदेव तीरथ स्थिति अर्थ करन लगे कई बार असि अन्वय नहीं करते किथे विश्राम देना है वो नहीं करते असि आखने अमृतसर सतगुरु सतवादी जिहड़ा सतवादी सतगुरु है वह अमृतसर रहिंदा अमृतसर सतगुरु सतवादी अमृतसर है ही सतगुरु जिहड़ा सतवादी अमृतसर सतगुरु सतवादी सतगुरु तो है ही अमृतसर जितना पे कौआ हंस एक ख्याल करो उनका नतीजा यह है कि असी अंदर मन ईर्खा नाल द्वैखता नाल करप्शन नाल लिपड़े हुए मन उवें जाके परिक्रमा विचों वापस ले आए केवल तन का इशनान सरोवर विच करा लिया। गुरु ने आखिया अंतर मल निर्मल नहीं किया मनुख तन के धोन का ख्याल आ गया। गुरु ने आख्या नहीं ख्याल करी गुरदेव तीरथ अंदर सरोवर कहन लगे उस गुरदेव तीरथ च पानी केड़ा है इशनान केड़ा कहन लगे गुरग्ञान मज्जन अपरंपरा जिहड़ा ज्ञान विच मन नू प्रवृत्त करना जो मन ने ज्ञान नू अपनाउणा है ना गुरु कोलों समझ लो मन का इशनान उदों होना है। लगे गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा लेकिन हो की रहा है केवल तन धोप रहा है तन इशनान कर रहा है इशनान करके तन सोने सुनखे कपड़े पा के गुरुद्वारे भी आ गया है मत्था भी हुक्मनामा सुने है चला गया है वो हुक्मनामे जेड़ा ज्ञान है ना उनका मन नाल कोई संबंध नहीं है मनुख समझी खरीद मैं बड़ा खूबसूरत बड़ा उजला हो गया बड़ा पवित्र हो गया। गुरु कहते गुरज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव तीर्थ साथ ना लागे मैल जे मर्द हुई है साथ ना लागे मैल कहने लगे अंदर अंदरों इशनान करन की लोड़ थी मन नू पवित्र करना सी पर होया इस दे उल्ट मन दिसया ना तन दिस पिया इनू तो कोई कुछ पिया फिर जियो मैले बारो निर्मल बारो तो निर्मल जियो मैले तिन्नी जन्म जुए हारे सारा जीवन इं तन नू ही धोंदा रहा तन दे इशनान ही करता रहा अठाठ तीर्थां ते इशनान ही करता रहा ते सोचियो सो मैं बड़ा पवित्र हो गया। कहने लगे जे वो अठाठ तीर्थ लावे जे वो द्वादश सिरा पजावे हालांकि गुरु ने बाणी भी आख्या कहन लगे जरा सिमरन करने वाला मनुख है वो तो जिथे कदम रख दे उठे अठाठ तीर्थ आ जाते हैं अठाठ तीर्थ जे साध पग धरै तहां बैकुंठ जे नाम उच्चरै। गुरु कहते वो ऐसा है एडा वड्डा तीर्थ है गुरु कि गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती ते उद्यम करे धूर साधु कीता है कि मैल भरे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। कहने लगे गल इसकी अंदर नूं पवित्र करन दी पर तन नूं पवित्र करके खुश हो गया जन्म सारा जीवन इवें गुजारिया
ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਐਬ ਤਲ ਚਿੱਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਡਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਂਢਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਖਾਂਦਾ, ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਂਢਕ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਰਾ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਵਰਾ ਆ ਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਬ ਤਣ ਚਿੱਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਡ ਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬੂਝੇ ਜਾਣੇ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਖੜਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੱਤੇ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਈ ਜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀ, ਆਖਰ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਮੱਝਣ ਅਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिस्त दूर गावे को वेखे आदरह दूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी गोटी गोट गोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म जलाई राह नानक अभिसै वे प्रवाह साचा साहेब साजनाए पाख्या पाव अपार आख है मंगै देहि दात करे दातार फिर के अगै रखिया जत दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिए जत सुन करे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वै जानिए सब आपे सुचार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जन से व्यातन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहे समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हाँ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देव जाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विस्तर न जाई तीर्थ नावा जेत सुभावा बिन भाणे ते नाए करी जेती सिरठ पाई वेखा बिन करमा के मिले लई मातुज रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुणी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा उर्द सोनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नौ रखाई कह जस कीरत जगले जे तैसो नजर न आवई ता बात न पुछे के गीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनया सद बीर सुरनाथ सुनया धरत धवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहन सत काल नानक भगतों सदा विगास सुनया दुख भाव का नाश सुनया ईश्वर ब्रह्मा अंद सुनया मुख साला हनुमंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतों सदा विगास सुनया दुख भाव का नाश सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनया मुख साला हनुमंद सुनया जुग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख भाव का नाश सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अड़सठ का इशनान सुनया पड़ पड़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख भाव का नाश सुनया सरा गुणा के गा सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै सगा नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख भाव का नाश मने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखण हार मने कावे करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जन मन कोए मने सुरतो वह मन बुद्ध मने सगल भवन की सुध मने मुँह चोटा न खाई मने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जन मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पद स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावे मुख द्वार मन्ने परवारे साधार मन्ने तरह तारी गुर सिख मन्ने नानक पवे न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए
ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦੁਰਗਾ ਮਾਨ ਬੰਚੇ ਸੋਹੈ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰੀਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੋਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਜਿਆਰ ਤਬਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦਿਸਦੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਅਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਭ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲੇ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਇੱਕੋ ਕਵਾਉ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀਆਉ

सशांक नाव संख थाव गम गम संख लो संख कहे सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सदा अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण।

मन कीता भाव अंतरगात तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मनाई कोए बिन गुण कीते भगत न होए सुवास्त आद बाणी बरमाओ सत सुहावन सदा मन चाओ गवन सुबेड़ा भक्त कवन कवन सित कवन वार कवन सिरुति मां कवन जित आकार वेल न पाईया पंडती जे हुआ लेख पुराण भक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण फित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सरठी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखां किव सालाई क्यों वरने किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा बड़ा साहेब बड़ी नाई कीता जा कहो वै नानक जे कहो आप जाने अगे गया न सोए पाताल पाताल लख आगास आगास कोड़ कोड़ कपाल सके वेद कहने कवात सहस ठारा कनक दे बास लू एक धात लेखा हो लिखी है लेखा हो विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाह इति सुरत न पाईया नदियां तै वाह पवहें समुद्र न जानी है।

यतमा सर्वसमाली वाजेनाद अनेक संखा केते वावणहारी केते राग परिसों कही अन केते गावणहारी गावे तोनो पौन पाणी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारी गावे हैं चेत गोबद लिख जाने लेख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी।

करारी गावन पंडित बण रखी सर जुग जुग विद्या नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे आसड़ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गावें खानी चारी गावें खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे थारे सही तुद नो गाव है जो तुद पावन औरते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चतन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन हो पाई कर कर वेखै कीता अपना जिव दिस दी वड्याई जो दिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो बादशाह शाम पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पद जोड़ी ध्यान की करें बिभूत गिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सकल जमाती मन जी तय जग जीत आदेश तस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एक होवे भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड़ वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जय कीर दिस देव प्रसाद संजोग बजोग कर चलावै लिखे आवै।

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथे नाद नोद गोड़ आनंद जन्म खंड की बाणी रूप जिसे गर्द कड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाए जे को कहे पिछे पछताए जिथे कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध जिथे कड़ी है सुरस दान की सुध कर्म खंड की बाणी जोर जिथे होर न कोई होर जिथे जोध महाबल सूर तिरमें राम रहे भरपूर तिथा सीतो सीता महिमा माहे दागे रूप न गदने जाए ना हो मरह न ठागे जाए जिनके राम बसे मन माहे तिथा भगत बसे कह लो करे आनंद सचा मन सोए सच खंड बसे निरंकारू कर घर विखे नजर निहाल तिथा खंड मंडल पर पांडव जे को कथे दंत न अंत तिथा लो लो आकार जिव जो हुक्म दिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा तीर्थ सुनियार अहरण मत भेद दिया।

Satrana Mitrana Paramana Pitrana Karmana Kaya Janamanga Jai Najitrana Mitra Parayampa Pitrana Pratisadi Sadri Sakri Sai Bhagavati Shandra Prasad Kathati Kya Shaj Desa Kya Pish Pish Sai Kya Gani Karma Kya Pani Parma Kya Pish Loka Kya Sada Soka Kya Vtut Parna Kya Vipoot Karna Kya Rajang Prabhaan Kya Dharmang Tujayan Kya Soka Parna Kya Sarva Parna कि जागतं कृति हैं कि शत्रंग शत्री हैं कि ब्राह्मण स्वरूप हैं कि अनुभव रूप हैं कि आदो देव हैं कि आप अपेव हैं कि शत्रंग भिन्न हैं कि कह दीन हैं कि रोज रिजा कर ही मेरे हाथ

चतुर चक्र भारती चतुर चक्र भुगते सुजाम भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ ताव प्रसाद सवैये एक ओंकार सतगुर प्रसाद ताव प्रसाद सवैये पातशाह दसवें श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख प्रयोग कर जो जति गए सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारिक संत समूह अनेक मति गए सारे ही देश को देख रहे हो मत गो न देखे प्राण पति गए सरी भगवान की पाई कृपा हूं ते कृति बने कृति के माते मदंग जर हर संग अनूप तंग सुरंग सवारी गोट तिरंग गुरंग से गूद दे बौन के गौन गुजात नवारी भारी बजान के भूप बली विद न्याव शीस न जात विचारी ते पाए दो काम पाए भूप दे अंत गुणांगी पाए पदारी जीत फिरे सब देश दसान को बाज तो टोल मृदंग नगारी गुंजत गुड जान के सुंदर हैं सत हैं अजराज हजारी भूत भवैक भगवान के भूत कौन गणे नहीं जात विचारी सरी पद सरी भगवान भजे वनंत को अंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दयादम दान सो संजम नियम अनेक वसेख है वेद पुराण देव कुरान जमीन जवान सुबान के बेख है पौन आहार जति जतार सब सब चार हजार के देख है सरी भगवान भजवन बहु पद एक रति बने एक न लिख है शुद्ध सुबाद रंत सुभाष सास नाद रजान दलाएंगे भारी गुमान परे मन मह करो पर्वत वंखल नहा लाएंगे दौर हरीन मरोर मवासन मध्य नंग हनुमान मलाएंगे सरी पद सरी भगवान भजे बिन त्याग जहान सरी पद सरी भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आर बचारे सारगी दार बछैया दूर तो देश मलिंद मवासन मातक जान के मान मलैया गढ़ गढ़ान को तोड़न हार सुबात नहीं जग चार लवैया साहेब सरी सब को सरना एक जाटकान एक सौ एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भवैख भगवान जपेंगे जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे साध समूह समूह प्रसन्न फिर जग सदर सब आव लोग जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात बजोंतर लोग राज करेंगे कोट स्नान गजा दिखदान अनेक सौ बरसात भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सदी पद अंत फसे जम बात भरेंगे जे नार सरी पद के बरसें भाग दे नार फेर न दे धरेंगे कहाँ पायो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहे हो भगत ध्यान लगाए उन हाथ भरे लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोग गवायो बास की ओवख्यान से बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहूँ सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पान पूज रो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा गोसी सुनवायो गऊ दान को पूज दै बास गऊ मृदान को पूजन थायो गूर करे और जो सभी जग सरी भगवान को भेद न पायो।

गर्भवाच बेन्ती चौ भई हमारी गर्भाद रचा पूर्ण हो जत की इच्छा तब चरण नमन रहे हमारा अपना जान करो व्रत भारा हमरे दोष्ट सब तुम गावो आप हाथ है मुझे बचावो सुखी बसै मोर परिवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करें सब बैर नकवाज संघरे हैं पूर्ण हुए हमारी आस।

असा तुम छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चन चन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे भरे है, मरण काल का द्रास ने भरे है। हू जो सदा हमारे पछा सरिया तुझ कर और अच्छा, राख ले उम रखनहारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कांता, काल पाई ब्रह्मा बपतरा, काल पाई शिव जू अवतरा, काल पाई कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताही हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंत कह अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सदरन को बल मोहबद कियो, गड़गड़ गए अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चिठी ते कुंजरिया सूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, गड़गड़ के बट बट की जाना, जब उद करख करा कर तार, प्रजा दर्द तब दे अपार। जब या करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद यार आलम, निरंकार निर्विकार निरलंब, आद नील नाद असंभ। ताका मूड चारद वेदा, जाको बेब न पावत वेदा, ताको कर पहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चिंतन है पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पहन पहन तो देती। तुमरा लखन जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुप स्वरूपा, रंग पयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज सिद जकीनी, उत्पुज खान बहोर रज दीनी, कहूं भूल राजा वह बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगा स्वरूप सुजंपव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संगरो। दोष जिते उठव दुद पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तोई तब सरणी परे, दिन के दोष दुख तब मरे। पुरख जवन पग परे तिहारी, दिन के तुम संकट सब टारी, जो कल कोई गवार ते आए हैं, ताके काल निकट नह आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दोष रिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जह नह रहो, ताके ताप तन को हरे हो। रद सद कर्मो सब होई, दुष्ट सास वह सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा। जिन नर नाम त्यारो कहा, दार्द दुष्ट दोगते रहा, खड़ग के

कहे नानक जस दे प्यारे सोई जन पावे। आवहो संत प्यारे हुए कथ की करें कहानी, करें कहानी कथ के रीगत द्वारे पाई है। तन मन धन सब साम गुरु का हुक्म मन्या पाई है।

जय तू जलाए दिव डला जना मार्ग पावे कर कृपा जन नाम लाहे से हर हर सदा ते आवे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सचे साहिब जो पावे दिव जलावे एह सुहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा शब्द शब्द सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया ए दिन कह मन बसया जंतरों लिखया आया एक फिर एक नेरे करे गल्ला गली गने न पाया कहे नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित पवित संगत सवाईया कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन बसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुखा रर त्याया करमी सहज ना उपजै गुण सहज सहसा न जाय न जाय सहसा कित संयम रहे कर्म कमाए सहसा जीव मलिन है कित संयम दोधा जाय मन धोवो शब्द लागो हर सिर चित लाई कहे नानक गुर प्रसादी कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय सहसा बजाय जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो बिसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेदा लिया कहे नानक जन सच दरिया गूढ़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो निर्मल जियो निर्मल सतगुर दे करनी गमाणी गूढ़गी सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया बलि से बन जारी कहे नानक जिन मन निर्मल हो सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु से सन्मुख हो वह हो तो सन्मुख सिख कोई जीव रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आई अंतरात्मा संभाले।

पूज सबगल समादन मुख चूड़ बै भुख नुसारन त्रैपाल ते हाल विचारन गल माला तिलक लिलाटन भोई तोती वस्त्र पाटन।

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहमूच। बहुत स्याणप जम का पौ व्याप, अनक जतन कर तृष्ण न त्राप। भेख अनेक अग्न नहीं बुझ, कोट उपाव दरगह नहीं सिज्झ। छूटस नाही ऊब पयाल, मोह व्याप माया जाल। अवर करतूत सगले जम डाना, गोविंद भजन।

मुख प्याऊ बैठ कौ दैना, ये निर्गुण गुण कछु न बूझै, बस लिहो तो नानक सीझै। जे प्रसाद तर ऊपर सुख बस है, सुत प्रात मीत बनता संग हस है। जे प्रसाद पीव

कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी, तुमते होए स्वाध्याकारी, तुमरे दत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी।

ये प्रसाद तेरा ओला बहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रवता कै। जे प्रसाद तुझको न पहुँचै, मन सास सास

हे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। हे प्रसाद तेरी नेकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। हे प्रसाद

साधकै संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साधकै संग बसै प्राणी ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साधकै संग दृढ़ै सब धर्म, साधकै संग केवल पार ब्रह्मा।

साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग श्रवथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै।

साध का संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियानह। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही परपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अस्पदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख। जैसे सूर सर्व कौ शोख, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान। जैसे राज रंक को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक। ज्यों बसधा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ। नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास।

मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नान

नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइया। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आपे परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा अभेष। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,

ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता।

ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी

सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने बहु भांत, प्रभते होए ब्रह्मा है समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत्त के बेते, सदा निहार है एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीव है, अमर पय सद सद ही जीव है। कई कोट नाम गुण गाव है, आत्मरस सुख सहज समाव है। अपने जन को सास सास मारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए। नानक तिस बलिहारण, जल थल मही अल सोए। अस्पदी करन करावन करन जोग, जो तिस पावै सोई होग। खिन मह था पयो था पनहारा, अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तारय तर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वड्याई, नानक सब मह रहया समाई। प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर त्रावै। प्रभ पावै बिन सास ते राखै, प्रभ पावै ता हर गुण भाखै। प्रभ पावै ता पतत उधारै, आप करै अपन बिचारै। दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिचै अंतर जामी। जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मानुख ते क्या होया वै, जो तिस पावै सोई करावै। इसका हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे। अनजानत बिखिया मह रचै, जे जानत अपने आप बचै। भरमे भूला दह दिसावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले।

जाका दृष्ट कछु ना आवै। इस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जाका अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा न गणे जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, कर्ण करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई पुन थियो। कभू ऊंच नीच मह बसै, कभू सोग हरख रंग हसै। कभू निंद चिंद व्यवहार, कभू ऊबा काश पयाल। कभू बेता ब्रह्म विचार,

मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति

गुरप्रसाद जा का मिटाय अभिमान, सो जन नानक दर गह परवान। कोट कर्म करे हों तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दर गह कहो कैसे गवै। आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै। सर्ब की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब ये जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचर नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुरप्रसाद नानक हों छूटै। सहस खटे लख कौ उठ धावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनिक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं कौ राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करनै हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किस कीनो स्वप्न रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरा न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेशे समझै आपे, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करनै हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान थनंतर एक कैसोए। अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग आपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किने बखियानी। सत सत सच सब कीना, कोट मध्ये किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप।

संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन।

अपने सेवक को नाम जपाए वाहे गुरु वाहे गुरु, अपने सेवक की आपत रख ताकि गतमित कोई

सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी सित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तारजन सगली मोही अपने चरित्र पव आप।

बिन सजाए हों मैं बिफैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियान पुस अगली मना, साध संग पावे सच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख

एक सिमरे को मनया है। एक के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप। अनक विस्तार एक के पहे, एक अराध प्राचत गए। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, वाहे गुरु वाहे अपनी भगती लाए। अस्पदी जाचक जन जाचै प्रवधान, कर कृपा देवो हर नाम। जाचक जन जाचै प्रवधान,

सदा सदा प्रभु के गुण गावो। सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एक आधार, नानक मांगा नाम प्रवसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्तमे, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने।

अंतर प्रगास आंदन लेवलाग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास आंदन लेवलाग बड़ पागी जपया प्रभ सोए।

गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए। नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वत्सल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्ब कटा कर।

रसना जपति हर हर नीत, भली सो करनी शोभा धनवंत, हिरदा बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास।

तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हर्ष सोग कहो किस है व्यापत, जब अपने आप आप पार ब्रह्मा।

जब होवत प्रभ केवल तनी, दब बंध मुक्त कौ किस कौ घनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सख्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत पर, तब कवन ने

दुर्लभ देह का करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पहर प्रभ पेख हो नेरा,

अंतरजामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहूत निहाल ताका नित नयावत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया

संत जना का पेखन सब ब्रह्मा, संत जना का हृदय सब धर्मा, संत जना सुनै

साध संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित हो नारायण एक

सावधान एकाग्र चीत सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सुभूत निधान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब

दुर्लभ देह तत्काल उधार निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मन माहे समानी निर्मल शोभा।

जंगमतरे भाव इंद्राद भगत प्रहलाद को आत्मरस जन जाने काव काल सुधा सुधा वो गुरु नानक राज जोग जन मानिया दबलो नी भाव लिलारी उदय तबलो भ्रमते सरते बहतायो काल घोर समुंदर में गुड़ते कब हूँ मत है नहीं ने पछताया

तो फिर गर्भास न परियारे कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सकल महिमा जो तिहारी हमना सकत कर सिह तुम्हारी आगल हो तुम कथा सुधारी। गीता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरुष भगवान दासन।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।

0: बूंदा चार चटियां ते कहन लगा दादा आज मेरे वरदान दियो सिक्की वाली पान आज मैनू भी चढ़ा दियो मैनू भी चढ़ा।
1: सत्संगियो गुरबाणी फरमाउंदी है कि सबना मन माणक ठा हुण मूल मचांगवा जे तो क्रिया दिखे किसे आओ न चाहे कही दा। कई बार साडे बुलारियां तो वक्तावां तो कोई हिरदे वेदक शब्द निकल जांदा है, कई बार इदां हो जांदा। मैं अपने सारे साथियों वालों आप संगत का अति ऋणी होवांगा। संगत बख्शनहार है, कोई ऐसा शब्द निकल गया होवे कोई हिरदे वेद माफी चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी।
2: ਇਹ ਸਨ ਚਮਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ।

साहिब कलगीधर पातशाह महाराज जी ने शीस की मांग की। लाहौर तो आया होया दया राम सतगुरां दे सामने हाजिर होया। मेरे गुरदेव सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज इस भाई दया राम दे सिर नूं प्रवान कर लैंदे ने। संगतां बैठियां इस गल वास्ते दो दित्ती च ने महाराज कि भाई दया राम दा सिर धड़ दे नाल वखरा कर देणगे। यकीन नहीं आउंदा, ऐसा हो नहीं सकदा। जेड़ा गुरु अपने सिखां दे नाल पुत्रां नालों वध प्यार करदा है वो गुरु अपने सिख दा सिर धड़ दे नालों वखरा कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सिर्फ मन दे फुरने सन, पर उधरों एक बार यकीन भी बजता मन नूं कि कुछ धड़ बेजबान डिगण की आवाज आई है, जिहड़ी आवाज इस गल का प्रतीक है कि सतगुरां ने दया राम का सिर धड़ दे नालों वखरा कर दिता है। यह आवाज सुनाई दिती नजदीक बैठे होया नूं, मन विच अजे भी यकीन नहीं बजता ऐसा हो नहीं सकता। पर शंका उदो दूर हो गया जदों मेरे कलगीधर पातशाह फिर आके स्टेज ते खड़े हो गए। सतगुरां दे हाथ विच वी तलवार जिहदे उत्तों ताजियां बूंदां खून दियां टपक रहियां ने। कोई भुलेखा ना रह गया, कोई शक ना रह गया। सारिया ने अपनियां अखां दे नाल इस शमशीर दे नाल लगा होया खून वेखिया, डिगदे होए तुटके धरती दे उत्ते वेखे। बस मन हैरानता दे विच छा गया, एक दूजे वल वेखण लग पए की कारा वरत गया। अज तक कदे ऐसा होया नहीं। गुरु नानक पातशाह महाराज जी तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह महाराज तक कदे ऐसा नहीं होया जिहो जिहा अज असीं अपनियां अखां दे नाल वेख रहे हां। और इह की कारण है? अजे संगतां दे मन अंदर विचार सी, मेरे सतगुरां ने अपनी चुप नूं फिर तोड़िया, आवाज दित्ती गुरु की संगत बड़े ने दुनिया दे अंदर कहण वाले, दाता जो कुछ है तेरा ही है। सच्चे पातशाह बख्शिया होया संसार दुनिया की दौलत सारा कुछ तेरा ही है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझ को सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु की संगत कहण वाले बड़े ने, पर गल कहण नाल नहीं बनदी जिन्ना चिर करनी वाले ना होण। इस संसार दे अंदर ओ जिस मनुख की कहनी हो रहा है करनी हो रहा है वो कहदा मनुख है? उन्हां दी बाबत तां मेरे साहब कहिंदे जिन मन होर मुख होर से कंडे कच्चा हो ते कच्चे ने। इस संसार दे अंदर जीवन जैसा है उसे दा असर है, उसे दी गल ते यकीन है जेड़ा कहनी ते करनी दा एक है। प्यारे गुरसिखो, गुरु नानक पातशाह महाराज जी दा घर इसे गल दी परपक्ता ते जोर दिंदा है। गुरसिखा बनावटी नहीं बनना, वखावे वाला नहीं बनना, अंदरों ते बाहरों एक बनना। कलगीधर पातशाह महाराज अज जदों स्टेज ते फिर दोबारा खलोते ने, सिख हैरान होए ने, संगतां विच बैठे होए, सतमुची सतगुरां ने दया राम दा धड़ दे नालों सिर वखरा कर दिता है। मेरे सतगुरां ने फिर आवाज दिती, गुरु की संगत अजे एक सिर आया, अजे होर दी लोड़ है, अजे हाथ विचली कृपान, इस दी प्यास बुझी नहीं। उठो कोई योदा, उठो कोई सूरमा तुहाडे विचों जिहड़ा परिवार का मोह त्याग के अपने गुरु की खुशी हासिल करना चाहता है, उठे कोई तुहाडे विचों। संगत एक दूजे वल्ले वेखदियां ने, एक ते चला गया, भुलेखा कोई नहीं रह गया, सिर धड़ दे नालों वखरा हो गया। कौन उठेगा दूजा जिस नूं सामने बहुत दिसदी होवे, चमकदी हुई शमशीर दिसदी होवे? जिहड़ा जाएगा उहदी गर्दन दे उत्ते इहदा वार होणा है। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪੱਲਾ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਲਿਆਰ ਲਓ। ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ।

ना रखी सकी। कह लगे लै भाई सद्दू, जेड़ा सलोट पढ़ेगा ना लाल चंद ओरे अर्थ करके तू दसने होंगे। गुरसिखो जो गुरु की गलती कृपा, फिर जेड़ा सलोक जेड़ा शब्द पढ़ता है लाल चंद ये छजू उसे दे अर्थ कर करके सुना दिंदा है। लाल चंद का हंकार वाला ताप एर उतर गया ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के चरणा ते टैपिया। खैर गल चल रही थी पंज प्यारे साहबाना की, जिसका जिक्र मैं कर रहा सी कि हिम्मत राय जेड़ा उड़ीसा तो चल के आया है। प्रिंसीपल साहब लिखते ने वह कहते छजू झीवर न गुरु साहब जी ने सिखी का प्रचारक बना के तोर दिता। उ छजू के अंश वंश के विचों परिवार के विचों ही ये फिर उड़ीसा की धरती तो चल के आए हिम्मत राय जी। इन्हों ने सतगुरों के सामने सिर झुका दिता चौथे नंबर से दाता ये शीस तुहाडा इनू प्रवान कर लो। महाराज फिर आ गए पंजवीं बार, लो भी एक सिख दे सिर की होर लोड़ है कोई उठे। जब आन के दातार जी ने फिर आवाज मारी फिर एक सिख आ गया सतगुरों के सामने अदब के नाल शीस झुका के की बेनती करता सरवण करो इवर जो।